人 T Rich。पल पल की खबर हर पल आपकी पहचान आपकी जबान आपकी आवाज वॉइस ऑफ नॉर्वे।

0: प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं।
1: ये तुम्हारा कर्म है आका, ये बात अब तक बनी हुई है।

0: woman.
1: Samin, asman ke tari gine ja sakte. Sundar ke katro ka shumar kiya ja sakta hai. सहरा की रेत के जर्रे गिने जा सकते हैं, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के मौसम इस कदर ज़्यादा हैं कि गिनती खुद उनकी गिनती करने से आजिज़ है। जब कुदरत ने आसमान खड़ा किया, ज़मीन फैलाई, आसमान को सितारों से सजाया, रंग बिरंगे कमकमे रोशन किए, क्यों? क्योंकि किसी की आमद मतलूब थी। वो कौन सी हस्ती थी जिसके लिए कुदरत ने सब कुछ किया? किसकी आमद मतलूब थी? कौन सी जात थी? क्या सूरज की ताबानी, क्या दरिया की रवानी, क्या सितारों के शब रोज अफरोशी, क्या कलियों के कह कह, क्या तहूर के नगमे, क्या शाखों का रक्स मतलूब था? ये तैयारियां तो किसी जू सिरे के लिए ही थीं। समीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत कामला से अपने पास बुला लिया, तो रफ्ता रफ्ता लोगों में गलतकारियों फरोग पाती रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में एक लंबा वक्त गुजरा जो तकरीबन 600 साल था। चुनांचे अल्लाह ताला ने इंसानों में बिगाड़ की इस्लाह के सिलसिले में तकमील का फैसला किया और इंसान को हकीकी इंसान बनाने के पैगाम के साथ सरजमीन अरब के शहर मक्का मौजमा में ख़ानदान कुरैश कहाँ दुआए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नतीजे में हज़रत अब्दुल मतलब के फर्जंद हज़रत अब्दुल्ला को एक ऐसे बच्चे से नवाजा जो कायनात के माथे का झूमर साबित हुआ। ये रबीउल अव्वल का महीना था। सुनिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार बार रबीउल अव्वल को पैदा हुए, इसी रोज़ आपको महराज अता हुई, इसी रोज़ आपको नबूवत मिली, इसी रोज़ आपने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की जानब हिजरत की और आपका वसाल मुबारक का दिन भी यही है। रबीउल अव्वल के महीने को सरवर कायनात फ़ख्र इंसानियत से ख़ास नस्बत है और इस माह से हर मुसलमान अकीदत और मोहब्बत और जज्बाती वाबस्तगी रखता है। याद रहे, इसी माह मुबारक माह मुकद्दस में कुरान पाक भी नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने कायनात की तखलील से अपने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अपने नूर से पैदा फरमाया। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने कायनात की तखलील से पहले तुम्हारे नबी का नूर अपने नूर से पैदा फरमाया। अल्लाह ताला की कुदरत से जहाँ अल्लाह ने चाहा वो नूर घूमता रहा। उस वक्त न लुख थी, न कलम, न जन्नत, न दोज़ख, न ज़मीन, न आसमान, न सूरज, न चाँद, न फरिश्ते, न जिन, न इंसान। समीन, आप नूर हैं और नूर कभी फना नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात ग्रामी को अल्लाह ताला ने ये बुलंद मकाम, जो अजमत, जो महबूबियत अता फरमाई, उसमें कोई आपका शरीक नहीं और इस हकीकत से कौन वाकफ नहीं कि अल्लाह ताला के बाद इस कायनात में सबसे ज़्यादा काबिले इत्राम हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। रबीउल अव्वल अकायद व जहाँ की आमद का महीना है, जो रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए इरशाद बारी ताला है और नहीं भेजा है हमने तुमको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर रहमत बनाकर जहान वालों के लिए। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 102 आयत में लफ्ज आलमीन आलम की जमा है, जिसमें सारी मखलूक बशमूल इंसान, फरिश्ते, जन्नात, हैवानात, नबातात, जमात हमादात सब ही दाखिल हैं। आपकी वलादत बसादत के वक्त बहुत से अजायब कुदरत का ऐसा दखल हुआ कि कभी दुनिया में वो बातें नहीं हुई। बेज़बान जानवर ने इंसानी ज़बान में आपकी खुशखबरी सुनाई, दरख्तों से आवाज़ें आईं, बुत परस्तों ने बुतों से आपकी खुशखबरी सुनी। दुनिया के दोनों बड़े बादशाहों यानी शाह फारस और शाह रूम को बज़रिया ख्वाब आपकी अजमत रफ़त से आगाही दी गई। सामईन, जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने से दिलों को सुकून मिलता है। नबी से मोहब्बत اور نبی کی آل سے محبت دنیا کو امن و سلامتی، برداشت اور احترام انسانیت کا درس دیتی ہے۔ نبی کریم سے محبت کامل ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ آپ کی ذات اقدس پر خود خداوند جل جلال درود و سلام بھیجتا ہے۔ آپ کے لیے یہ حسین موقع ہے، آپ گناہوں کی بخشش کے لیے کثرت سے حضور اور ان کی آل پر درود و سلام کا نذرانے پیش کرے۔ سامعین، محبوب رب العالمین، سید المرسلین، خاتم النبین، صاحب قاب و قوسین، بشیر و نذیر، سراج مبین، مولا کل، محسن انسانیت، رہبر آدمیت، سید عرب و عجم، ہادی عالم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی، آپ کی ولادت باسعادت اور دنیا میں تشریف آوری سے عالم انسان کے خزاں رسیدہ زندگی میں پرکیف بہار آئی۔ ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہونے سے بندگان خدا کا وہ منزل ملی جس سے توحید کا نور عام ہوا، کفر شرک کی تاریکی چھٹ گئی، دنیا خلیل تمنائے کلیم اور نوید مسیحا حضرت محمد کی ظہور قدسی سے عالم نور طلوع ہوا، انسانیت کی شعبہ سعادت کا آغاز ہوا، تاریکی میں روشنی کی کرن نظر آئی، اللہ رب العزت نے ایک عظیم انقلاب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بفرا، جو کہ نہ صرف عرب معاشرے کے لیے بلکہ تا قیامت کل انسانیت کے لیے دائمی طور پر مشعل راہ اور راہ ہدایت اور صراط المستقیم قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت و رہنمائی کی کے لیے جو دین بھیجا، وہ نہ صرف ہماری انفرادی زندگی کا طرز عمل واضح کرتا ہے بلکہ اجتماعی سطح پر بھی ہماری زندگیوں کا لایا عمل متعین کرتا ہے۔ ہمیں اپنے کردار کا سنت رسول کے آئینے میں ڈھالنا ہوگا۔
0: مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا

आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल वॉइस ऑफ नॉर्वे। इस नात के साथ ही रेडियो ईश की उर्दू नशरियात का वक्त खत्म हो जाएगा। ये प्रोग्राम अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी थर्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से सुना और इस प्रोग्राम को आप तक पेश करने में मेरा साथ दिया है तनवीर दुर्रानी, मिसेज ए खान और मिस गिरी ने। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।